0: अभी आप श्यामा संगीत सुन रहे थे। आज के कलाकार थे तिमिर घोष। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन हिंदुस्तानी संगीत। हिंदुस्तानी संगीत के तहत आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम, और भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं श्यामा संगीत। लीजिए, प्रस्तुत है अमियांशु मुखोपाध्याय का गाया श्यामा संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू श्यामा संगीत बाय आवर आर्टिस्ट Timir Ghosh. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Concluding the program this evening, we present Shyama Sangeet by our artist Omiyangshu Mukherjee.

0: अभी आप भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में श्यामा संगीत सुन रहे थे। कलाकार थे अमियांशु मुखोपाध्याय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू श्यामा संगीत। आवर आर्टिस्ट वॉज Amiyangshu Mukherjee. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राग बैरागी में ख्याल गायन. आज के कलाकार हैं कोयल दास गुप्ता. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं इमोन सरकार. तो आइए सुनते हैं राग बैरागी में ख्याल गायन, कलाकार कोयल दास गुप्ता.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल. Listen first to a khayal in the rag Bairagi. Our artist is Koyal Das Gupta. Accompanying our artist on the tabla is Imon Sarkar. Listen now to a khayal in the rag Bairagi. Our artist Koyal Das Gupta.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बैरागी में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज ही कलाकार थी कोयल दास गुप्ता। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे इमोन सरकार। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग बिलास खानी तोड़ी में धमार। आज ही कलाकार हैं शिवली चक्रवर्ती। आज आपके साथ पखावज प्रसंगत कर रहे हैं अपूर्व लाल मन्ना। तो लीजिए प्रस्तुत है राग बिलास खानी तोड़ी में धमार, कलाकार शिवली चक्रवर्ती।
1: You were listening to a khayal in the rag Bairagi. Our artist was Koel Das Gupta. Accompanying our artist on the tabla was Imon Sarkar. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present Adhamar. Listen to Adhamar in the rag Bilash Khani Tori. Our artist is Shivli Chakraborty.

家给呀的是等你的比我生人后呀这都不家给呀的是等啊的是啊的是等啊的是等啊这都家给呀的是等家给呀的

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बिलास खानी तोड़ी में धमार सुन रहे थे। कलाकार थी शिवली चक्रवर्ती। आज आपके साथ पखावज पर संगत कर रहे थे अपूर्व लाल मन्ना। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a dhamar in the rag Bilashkhani Tori. Our artist was Shivli Chakraborty. Accompanying her on the pakhavaj was Apurbalal Manna. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कुंवर राजेंद्र सिंह का स्वरलीन वादन. प्रस्तुत है राग चंद्रकौंस.

लंबित गत एक ताल में निबद्ध है तथा द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। उन्हें तबले पर संगति कर रहे हैं पंडित मदन मिश्रा। दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी नाउ प्रेजेंट स्वरलीन वादन बाय कुंवर राजेंद्र सिंह। ही प्रेजेंट्स राग चंद्रकंस, विलंबित गत सेट टू एक ताल एंड द्रुत गत सेट टू तीन ताल। ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय पंडित मदन मिश्रा।

ये था राग चंद्रकोस। आप सुन रहे थे कुंवर राजेंद्र सिंह से स्वरलीन वादन। उन्हें तबले पर संगति कर रहे थे पंडित मदन मिश्रा। आइए सुनते हैं पंडित कार्तिक कुमार का सुरबहार वादन। प्रस्तुत है राग तुलसी कोस। इसमें

आलाप जोड़ झाला तथा धमार तालमेलीबद्ध गत प्रस्तुत है. दैट वॉज राग चंद्रकंस. यू आर लिसनिंग टू स्वरलीन रिसाइटल बाय कुंवर राजेंद्र सिंह. ही वॉज अकंपनीड ऑन तबला बाय पंडित मदन मिश्रा. वी प्रेझेंट सुरबहार रिसाइटल बाय पंडित कार्तिक कुमार. ही प्रेझेंट्स राग तुलसी कंस इन विच ही प्लेज आलाप जोड़ झाला एंड गत इन धमार ताल.

ये था राग तुलसी कंस। आप सुन रहे थे पंडित कार्तिक कुमार का सुरबहार वादन। उन्हें पखवाज पर संगति कर रहे थे प्रकाश शेजवल। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज राग तुलसी कंस। यू वर लिसनिंग टू सुरबहार रिसाइटल बाय पंडित कार्तिक कुमार। He was accompanied on Pakhwaj by Prakash Shezwar. This was a contribution by All India Radio Mumbai. This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH in Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है। प्रस्तुत है स्वप्नमय बैनर्जी का सरोद पर बजाया राग बसंत मुखारी। विलंबित और द्रुतगत तीन तालमनी बद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है सुखमय बैनर्जी ने।
2: This is the Ragam channel of All India Radio Delhi. We now present for you a road recital by Swapnamay Banerjee. Accompaniment on the tabla is provided by Sukhmay Banerjee. Listen to Rag Basant Mukhari, in which you will hear the alap followed by the vilambit and drutgat set to Tintal.

0: अभी आप स्वप्नमय बैनर्जी का सरोद पर बजाया राग बसंत मुखारी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी सुखमय बैनर्जी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: दैट वॉज राग बसंत मुखारी एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द सरोद रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय स्वप्नमय बैनर्जी। अकंपनीमेंट ऑन द तबला वॉज प्रोवाइडेड बाय सुख बैनर्जी। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित सुखदेव चतुर्वेदी से ध्रुपद धमार गायन। प्रस्तुत है राग नट भैरव, इसमें आलाप तथा चौताल में निबद्ध ध्रुपद प्रस्तुत है। बोल शंकर हर महादेव। दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट ध्रुपद धमार रिसाइटल बाय पंडित सुखदेव चतुर्वेदी। ही प्रेजेंट्स राग नट भैरव इन विच आलाप एंड ध्रुपद सेट टू चौताल। बोल शंकर हर महादेव।

ये था राग नट भैरव। आप सुन रहे हैं पंडित सुखदेव चतुर्वेदी का ध्रुपद धमार गायन। उन्हें पखवाज पर संगति कर रहे हैं प्रकाश शेजवल। अपना गायन जारी रखते हुए पंडित सुखदेव चतुर्वेदी अब प्रस्तुत करते हैं राग बिहाग। इसमें आलाप और धमार प्रस्तुत है। बोल नवेली मधमाती चली आई, दैट वॉज राग नट भैरव। You are listening to Dhrupad Dhamar recital by Pandit Sukhdev Chaturvedi. He is accompanied on pakhwaj by Prakash Shezwal. Continuing his vocal recital, Pandit Sukhdev Chaturvedi now present Raag Bihag, in which he presents Aalap and Dhamar. Bol Naveli Madhamati Chali Aayi.

ये था राग बिहाग। आप सुन रहे थे पंडित सुखदेव चतुर्वेदी का ध्रुपद धमार गायन। उन्हें पखवाज पर संगति कर रहे थे प्रकाश शेजवल। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज राग बिहाग। यू वर लिसनिंग टू ध्रुपद धमार रिसाइटल बाय पंडित सुखदेव चतुर्वेदी। He was accompanied on Pakhwaj by Prakash Shezwal. This was a contribution by All India Radio Mumbai. This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: आचार्य आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं जॉय दास गुप्तो और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रथींद्रनाथ चक्रवर्ती। ताई सुनते हैं राग रागेश्वरी में ख्याल गायन, कलाकार दुर्वा भट्टाचार्य।
1: This is Ragam 24/7 anytime Indian music. This evening we present a Hindustani vocal recital. Listen to Khayal in Rag Rageshri. Our artist this evening is Durba Bhattacharya. Listen to Khayal in Rag Rageshri. Our artist this evening is Durba Bhattacharya. The accompanying artist is Joy Das Gupta on the tabla and Rathindranath Chakraborty on the harmonium. Listen to the Rag Rageshri by Durba Bhattacharya.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग रागेश्री में ख्याल गायन. आज के कलाकार हैं दुर्गा भट्ट.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग रागेश्री में ख्याल सुन रहे थे। आज की कलाकार थी दुर्वा भट्टाचार्य। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे जॉयदास गुप्तो और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रथींद्रनाथ चक्रवर्ती। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग जोग में सरोद वादन। आज के कलाकार हैं अभिषेक लाहिड़ी। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं प्रशांत डे रॉय।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग जोग में सरोद वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे अभिषेक लाहिड़ी। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांत डे रॉय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sarod recital in Rag Jog by Abhishek Lahiri. Accompanying him on the tabla was Prashanto De Roy. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत. आज प्रस्तुत है पंडित सतीश चंद्र का सारवादन. सबसे पहले आप राग जौनपुरी प्रस्तुत करेंगे. विलंबित गत 3 ताल में निबद्ध है तथा द्रुत गत भी 3 ताल में निबद्ध है. आपके साथ पेपर संगत कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र. तो आइए सुनते हैं पंडित सतीश चंद्र का बजाया सितार पर राग जौनपुरी.

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारती संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित सतीश चंद्र का बजाया सितार पर राग जौनपुरी। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया सितार पर राग किरवानी। विलंबित गत तीन ताल में निबद्ध है तथा द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं शीतल साध मिश्र।

अभी आप सुन रहे थे पंडित सतीश चंद्र का बजाया सितार पर कीर्वानी। आप अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे सितार पर बजाया राग गारा में एक धुन से, जो कि दादरा में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र।

यह है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे पंडित सतीश चंद्र का बजाया सितार पर राग गारा में धुन। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे शीतल प्रसाद मिश्र। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

Money,

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन. कलाकार हैं पंडित देवव्रत चौधरी. राग है कोमल ऋषभ आसावरी. आप प्रस्तुत कर रहे हैं आलाप और विलंबित गत. विलंबित गत 3 ताल में निबद्ध है. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी सितार रेसाइटल बाय पंडित देवव्रत चौधरी. द रेंडेशन कमेंस विद द राग कोमल ऋषभ आसावरी.

अब आप सुनेंगे राग रागेश्री। आप प्रस्तुत कर रहे हैं रागेश्री में आलाप और दो गतें, जो क्रमशः तीन ताल में निबद्ध हैं। कलाकार हैं पंडित देवव्रत चौधरी। नाउ लिसन टू राग रागेश्री बाय पंडित देवव्रत चौधरी।

आप सुन रहे हैं सितार वादन, कलाकार हैं पंडित देवव्रत चौधरी। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित देवव्रत चौधरी। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित देवव्रत चौधरी से राग भैरवी में एक धुन। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स भैरवी धुन।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन। कलाकार थे पंडित देवव्रत चौधरी। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सितार रेसाइटल बाय पंडित देवव्रत चौधरी। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एंड एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है उमा गर्ग का गाया राग श्याम कल्याण. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं झूलत राधा प्यारी और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं बावरी भई पिया बिना. तबले पर आपकी संगति की है अख्तर हसन ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट फॉर यू अ वोकल रिसाइटल बाय उमा गर्ग. शी इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय श्री अख्तर हसन एंड ऑन द सारंगी बाय पंडित भारत भूषण गोस्वामी. ऑन द हारमोनियम इज अशोक कुमार. उमा गर्ग फर्स्ट प्रेजेंट्स राग श्याम कल्याण इन विच शी प्रेजेंट्स विलंबित ख्याल सेट टू एक ताल. द लिरिक्स आर झूलत राधा प्यारी. दिस विल बी फॉलोड बाय द द्रुत ख्याल सेट टू तीन ताल. द लिरिक्स ऑफ छोटा ख्याल आर बावरी भई पिया बिना.

0: अभी आप उमा गर्ग का गाया राग श्याम कल्याण सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी अख्तर हसन ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। और लीजिए अब सुनिए उमा गर्ग का गाया राग कौसी कान्हड़ा। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं दिन बीत गए। और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं काहे करत मोसे बरजोरी। तबले पर आपकी संगति की है अख्तर हसन ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: यू आर लिसनिंग टू राग श्याम कल्याण संग बाय श्रीमती उमा गर्ग। कंटिन्यूइंग विद हर वोकल रिसाइटल शी नाउ प्रेजेंट्स राग कौसी कान्हड़ा। शी फर्स्ट प्रेजेंट्स विलंबित ख्याल सेट टू एक ताल। द लिरिक्स ऑफ दिस विलंबित ख्याल आर दिन बीत गए। दिस विल बी फॉलोड बाय द द्रुत ख्याल सेट टू तीन ताल। The lyrics of this are काहे करत मोरी बरजोरी।

0: अभी आप उमा गर्ग का गाया राग कौसी कान्हा सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी अख्तर हसन ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिस्निंग टू राग कौसी कान्हा संग बाय श्रीमती उमा गर्ग। शी वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय श्री अख्तर हसन, ऑन द सारंगी बाय पंडित भारत भूषण गोस्वामी एंड ऑन द हारमोनियम बाय अशोक कुमार। This program was a presentation of All India Radio, Delhi.

0: नंदिनी भट्टाचार्य, नवनीता बसु, विश्वनाथ चंदो, सौरव मायती और नमिता भट्टाचार्य। आज के भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम का प्रारंभ हम भजन से करने जा रहे हैं। कलाकार हैं नंदिनी भट्टाचार्य। तो ये सुनते हैं नंदिनी भट्टाचार्य से ये भजन।
1: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनीटाइम इंडियन म्यूजिक। वी प्रेजेंट डिवोशनल सॉन्ग्स। वी बिगिन द प्रोग्राम विद मीरा भजन फॉलोड बाय अ कबीर भजन। आवर आर्टिस्ट इज Nandini Bhattacharya. Listen now to Meera and Kabir Bhajans. Our artist, Nandini Bhattacharya.

0: अभी आप नंदिनी भट्टाचार्य से ये भजन सुन रहे थे। आइए आप सुनवाते हैं एक और भजन। कलाकार हैं नवनीता बासु। तो लीजिए सुनिए नवनीता बासु का गाया ये भजन।
1: यू वर लिसनिंग टू मीरा एंड कबीर भजन्स। आवर आर्टिस्ट वॉज नंदिनी भट्टाचार्य। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। Listen now to a Kabir bhajan by our artist, Nabonita Basu.

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी भक्ति संगीत का कार्यक्रम। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्यामा संगीत। इस श्यामा संगीत के गायक कलाकार हैं विश्वनाथ चंदो। तो ये सुनते हैं विश्वनाथ चंदो से श्यामा संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू कबीर भजन्स बाय आवर आर्टिस्ट नोबोनीता बासु। दिस इज रागम 24/7 on DTH, anytime, Indian music. Continue.

0: अभी आप श्यामा संगीत सुन रहे थे। कलाकार थे विश्वनाथ चंदो। श्यामा संगीत का ये क्रम जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सौरव मायती का गाया हुआ ये श्यामा संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू श्यामा संगीत बाय आवर आर्टिस्ट विश्वनाथ चंदो। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। वी नाउ प्रेजेंट श्यामा संगीत बाय आवर आर्टिस्ट सौरव मायती।